0: ओ मेरो फुलीवाली, अब के छ त पिक्चर
1: के पिक्चर को फुलीवाली म त बहिनी
0: बहिनी त साली तिमी नै त अनि मेरो फुलीवाली